आवन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोध महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे।

जिन दिन कर कह की ती रात, खसम विसारह ते कम जात, नानक नावे बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा।

कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मुको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ।

शिव जो शिव तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है हर त्याव तुद जी से जन जुग मह सुखवासी।

भगत तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनेक अनेक।

प्रियवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करे हो रक्षा। राख ले हो मुहि रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाश।

सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड

मूल कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, परनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेर जसे तजकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकरे कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिकु बार असिक संगरु, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी।

एक न मान्यू। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यू। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बकान्यू। दो हरा

और सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज सेती मन वजियां, वाधाइयां राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईयां, शब्दों ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया।

नाही घर तेरै, घर ता तेरै सब किछ है। जिस देहे सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहु, जिस दिया एह वडे आईया, कह नानक सुनहु संत हो, शब्द धरो प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच सब तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया, तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक तै सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, अनद सुनू वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भए सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

चक्कर चिहन यार वरण जात यार पातन हण जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के।

जय कार कीर्ति आखिए करते का हुए बिचारो तित कर गावो सोहेला सुबिरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख हो।

सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदे चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै स्वार्थी होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग कहो जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा।

ज्यों ज्यों चलहै चुभै दुख पावै जम काल सहै सिर डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाणै दुख जन्म मरण पव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाहे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड वड्डा हे। जन नानक नाम धार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे।

0: अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ
1: कल क्लेश तन माहि मिटाओ
0: सिमरौ जास विषम परे कै
1: नाम जपत अनेक अग्रत अनेक।

0: सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम
1: भक्त जना के मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसे
1: कै सिमरन दुख जम नसे
0: प्रभ कै सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरे
0: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे
1: प्रभ कै सिमरन अंधिन जागे
0: प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापे
1: प्रभ कै सिमरन दुख न

0: समुचा
1: प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै
0: सबके सिमरन सबके सुजै
1: प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा
0: सबके सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए
0: अमृत नाम हृदय माए समाए
1: प्रभु जी बसै साध की रसना।

0: सुखवासी
1: रखो सिमरै सदा बनासी
0: सिमरन से लागे जिने आप दयाला
1: नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै से पर उपकारी
1: रखो सिमरै तिन सद बलिहारी
0: प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे
1: रखो सिमरै तिन सुख बिहावे
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता
1: रखो सिमरै तिन निर्मल रीता
0: प्रभु को सिमरै तिन अनद कने

0: रब कै सिमरन हर गुण बानी
1: ओ कै सिमरन सह समानी
0: रब कै सिमरन निचल आसन
1: ओ कै सिमरन कमल विगासन
0: रब कै सिमरन अनहद चुनकार
1: सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार
0: सिमरह से जन जिन कौ प्रभ मया
1: नानक तिन जन सरनी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीचो गुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन कियो सगल अकारा
1: हर सिमरन में आप नंकारा
0: हर कृपा जिसे आप बुझाया
1: नानक गुरमुख
0: हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द

0: शरीर कटाए हम मैं कर राती,
1: मूर्त नेम करे वह पाती,
0: नहीं तुल राम नाम विचार,
1: नानक गुरमुख नाम जपिए कवार,
0: नाव खंड पृथ्वी फिरे।

0: निमकर शरीर कटावे
1: तो भी होमे महल न जावे
0: हर के नाम समसर कछ नाही
1: नानक गुरमुख नाम जत गत पाहे
0: मन कामना तीर्थ देह छुटे
1: गर्व गुवान न मनते हुटे
0: सोच करे दिन सर रात
1: मन की महल न तनते जात
0: इस देही को बहु साधना करे
1: मन से कबू न विखिया डरे
0: जल तू वह बहु देह अनीत
1: शुद्ध कहावे काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक उदरे पत बहु मूच
0: बहुत सियान पजम का पहु व्यापै
1: मन के जतन करते।

0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: देखे सगल श्री साजना
0: दुख दुख जन सम दृष्टेता
1: नानक पाप पुन नहीं लेपा
0: निर धन को धन तेरो नाओ
1: नसामे को नाओ तेरो ताओ
0: निमाणी कौ प्रभ तेरो मान
1: सगल कटाको देवो दान
0: करन करावन हार स्वामी
1: सगल कटाके अंतर जामी
0: अपनी गात्मित जान हो आपे
1: अपन संग आप प्रवराते
0: तुमरी उष्ट तुम ते हुए
1: नानक वर्ण जानस कोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जब निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: सत्संग धर्मत मल हरिया
0: सगल उद्यम में उद्यम भला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल बानी में अमृत बानी
1: हर को जस सुन रसन खानी
0: सगल थान ते उत्तम थान नानक जी का

0: नानक राख लेहु अपन कर कर्म
1: तू ठाकर तुम पै वास
0: जियो पिंड सब तेरी रास
1: तुम मात पिता हम बारक तेरे
0: तुम्हारी कृपा मैं सुख कनेरे
1: कोई न जाने तुम्हारा अंत
0: ऊचे ते ऊचा भगवंत
1: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी
0: तुम ते होए सो आज्ञाकारी
1: तुमरी गद मित तुम ही जानी
0: नानक दास सदा कुर्बानी।

0: चरण पर विकार को तावे,
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे,
0: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा,
1: मिथ्या वासले विकारा,
0: बिन बूझे मिथ्या सब पई,
1: सफल

0: बिन सिमरन दिन रैन ब्रिता बिहाए
1: मेघ बिना ज्यो कीती जाए
0: गोबिंद भजन बिन ब्रिथे सब काम
1: ज्यो कृपन के नाल दाम
0: धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रह तवर कछवर कमावत
1: मन नहीं प्रीत मुखो गुंड लावत
0: जानन हार प्रभु परबीन
1: मार भेख न काऊ पीन
0: अवर उपदेश आप न करे
1: अब जब जन्मे मरे
0: इसके अंतर बसे निरंकार
1: इसकी सीख तरह संसार
0: जो तुम पाने तिन

0: परम गत पावे।
1: ये प्रसाद से सुख मंदर
0: सहत्याय सदा मन अंदर।
1: ये प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरहु तिस रसना।
1: ये प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याये त्यावन जोग।
1: ये प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
0: सहत्याकत अवर लुभावे।
1: ये प्रसाद सुख से सुविजे
0: मन आठ पहर ताका जस गावी।
1: ये प्रसाद सबको माने
0: मुख ताको जस रसन बखाने।
1: ये प्रसाद रहता धर्म
0: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
1: प्रभु जी जब दर गए मान पावे
0: नानक पद छेती कर जावे।
1: ये प्रसाद आरोग कंचन देही
0: लिव लावो तिस राम स्नेही।
1: ये प्रसाद रहो लय राहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: ये प्रसाद तेरे सगल सिद्ध ठाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ठाके।
1: ये प्रसाद तुझको ना पूछे
0: मन साथ साथ सिमर हो प्रभु ऊचे।
1: ये प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भगत करे।
1: ये प्रसाद आपूखन पैरी जे
0: मन ते सिमरत क्यों वाल सकी जे।
1: ये प्रसाद असवो हस्त सवारी
0: मन तिस प्रभु को कबहू न बिसारी।
1: ये प्रसाद बाग मिलक धना
0: राख प्रोय प्रभु अपने मना।
1: इन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठत सद
1: तिसहत्याई जो एक लखे
0: ऊहा नानक तेरी रखे।
1: ये प्रसाद करे पन बोदान
0: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।
1: ये प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: इस प्रभु को साथ साथ चितारी।
1: ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: ओ प्रभु सिमरहु सदा अनूप।
1: ये प्रसाद तेरी निकी जात
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: ये प्रसाद तेरी पतरा है
0: गुर प्रसाद नानक जस कह।
1: ये प्रसाद सुने करनाद
0: ये प्रसाद पेख है बिस्माद।
1: ये प्रसाद बोले अमृत रसना
0: ये प्रसाद सुख सहजे बसना।
1: ये प्रसाद हस्त कर चले
0: ये प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: ये प्रसाद परम गत पावे
0: ये प्रसाद सुख सहज समावे।
1: ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: ये प्रसाद तू प्रगट संसार
0: इस प्रभु को मूल न मनो विसार।
1: ये प्रसाद तेरा प्रताप
0: मन मूड तू ताको जाप।
1: ये प्रसाद रे कार्य पूरे
0: सह जानो मन सदा हजूरे।
1: ये प्रसाद तू पावे साच
0: रे मन मेरे तू तास्यो राच।
1: ये प्रसाद सबकी गत होए
0: नानक जाप जपै जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाओ
0: आप गावाए सुहर गुण गाओ।
1: कृपा ते हुए प्रगास
0: प्रभु दया ते कमल विगास।
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दया ते मातुतम होए।
1: सर्वन दान प्रभु तेरी मया
0: आपू कछु न किन्हू लया।

0: चर्च कथा
1: अष्ट परी साध कै संग मुख उज्जल होत
0: साध संग मल सगली खोत
1: साध कै संग मिटे अभिमान
0: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
1: साध कै संग बुझे प्रभ नेरा
0: साध संग सवोत नवेरा
1: साध कै संग पाए नाम रतन
0: साध के संग कुपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा प्रमाए समानी
1: साध कै संग अगोचर मिले
0: साध के संग सदा प्रफुल
1: साध के संग वह बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पंचा
1: साध संग हुए सब की रेन
0: साध के संग मनोर बैन
1: साध के संग न कतु तावे
0: साध संग अस्तत मन पावे
1: साध के संग माया ते पिन
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग माप नीत
1: साध संग किस्यो नहीं बैर
0: साध के संग न बिगा पैर
1: साध के संग ना ही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग ना ही हो ताप
0: साध के संग तजे सव आप
1: आपे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग ना कब हूं तावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग दस्त गोचर लह
0: साधु के संग जर सह
1: साध के संग बसे थान ऊंचे
0: साधु के संग

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

0: बृहस्पति, कई कोट हुए पुजारी,
1: कई कोट आचार व्यवहारी,
0: कई कोट पै तीर्थवासी,
1: कई कोट बन प्रमह उदासी,
0: कई कोट वेद के श्रोते,
1: कई कोट तपीसर होते।

0: नानक गर्भ गले अष्टदी
1: जिसके अंतर राजमान
0: सो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो मन मंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आपस को कर्मंत कहावे
0: जन्म मरे बहुजोन प्रमावे
1: तन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्खंदा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बिसावे
0: नानकी हां मुक्ता गै सुख पावे
1: कर्मंता होए कर गरवावे
0: तिन समान का संग न जावे
1: बोला कर्मान कूपर करे आस
0: पाल पीतरता का हुए विनाश
1: सबते जाने आप सबते आप जाने बलवंत
0: इन में हुए जाए पुष्मंत।

0: आवै सगले बिरतारे,
1: अनक तपस्या करे अंकार,
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार,
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे,
0: हर दर्ग है कहो कैसे गवे,
1: आप उसको जो भला कहावे,
0: किस हे भलाई निकट न आवे,
1: सर्व की रेन जा का मन होए,
0: कब नानकता की निर्मल सोए,
1: जब लग जाने मुझसे कुछ होए,
0: तब इसको सुख नाही कोए,
1: जब जाने में कुछ करता,
0: तब लग गर्भ जोन वह फिरता,
1: जब तारे को वैरी मीट,
0: तब लग निश्चल ना ही चीत,
1: जब लग मोह मगन संगमाए,
0: तब लग धर्म राय देश जाए,
1: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे,
0: गुर प्रसाद नानक कहो छूटे।

0: अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै।
1: संत कै दुखन जमते नहीं छुटै।
0: संत कै दुखन सुख सब जाए।
1: संत कै दुखन नरक में पाए।
0: संत कै दुखन मत हुए मलीन।
1: संत कै दुखन सो बाते हीन।
0: संत के हते को रखै न कोई।

0: संत का दुखी सदा अपवित्र,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब ते आगे,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी स्वाविकारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे।

0: संत के दुखी को ध्यान परमाइये,
1: संत का दुखी उजड़ पाइये,
0: संत का दुखी अंतर ते तोता,
1: जो सास बिना मिटता की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाही,
1: आपण बीज आपे ही खाए,
0: संत के दुखी को वर न रखन हार,
1: नानक संत भावे ता लए वार,
0: संत का दुखी यों बिन लाए,
1: जो जल भी हून मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पाप की इंधन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे
1: संत
0: का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
0: कीर्त निंद का तुर ही पया,
1: नानक जो सुभावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहताइए,
1: संत का दुखी नाम रे ना जवाइये,
0: संत के दुखी की पूजे न आसा,
1: संत का दुखी उठ चले न आसा,
0: संत का दुख न त्रष्ट कोई,
1: भावे तैसा कोई होए,
0: दया कीर्तन मिटे कोई,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब घट किसके ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: रब की उष्टत करहु दिन रात,
1: तिसे ते आवो सास ग्रास,
0: सब कछ वर्त तिसका

0: कर पाया सोई होगा।
1: अर्ण तरण जाका नेत्र भोर
0: इसका मंत्र न जाने हो।
1: अंधरु मंगल सज जाके
0: सर्व थोक सुनिए कर ताके।
1: राज में राज जोग में जोगी
0: तप में तपेश्वर गृष्ट में भोगी।
1: जाए जाए भक्त सुख पाया
0: नानक तिस पुर का किने अंत न पाया।
1: की लीला कीमत ना है
0: सगल देव हारे अवगाहे।
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोई अपने सूत।
1: समात ज्ञान ते अंजन दे
0: जनदास नाम ते आवे
1: गुण।

0: चार कुंट उठता वह
1: तो धन हर सेवा ते पाव
0: जिस सुख कौ नित बाचह मीत
1: तो सुख साधु संग प्रीत
0: जिस शोभा कौ करह भली करनी
1: सा शोभा भज हर की सरणी
0: अनिक उपावी रोग न जाए
1: रोग मिटा।

0: सेवा बन आई,
1: कंबूझ परम पद पाई,
0: ऐसे ऊपर नहीं विचार,
1: मन बसिया निरंकार,
0: बंधन तोर पै निर्वैर।

0: आनंद
1: राम नाम तत करो विचार
0: लब देखा करो उधार
1: अमृत भजन हर के गुण गाओ
0: प्राण करण का यह सुहाओ
1: आठ पहर पव पे खोनेरा
0: मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा
1: सुन उपदेश हृदय बसा बहो
0: इच्छे नानक फल पावो
1: हालत पालत धोए

0: कर पाहन अनमानत
1: मां मोड कज भेद न जानत
0: देव को कहत सदा शिव
1: निरंकार का जिनत न पेव
0: अपनी बुद्ध है जीती
1: बनत पैन पैन तव तेरी
0: मेरा लखाना जाए पसारा
1: केवल सजा प्रथम संसारा
0: के रूप अनूप स्वरूप
1: रंग भयो राव कै भूपा
0: जिद स्थित जगिनी
1: उद्वज खान बहुत रज दीनी
0: फूल राजा है बैठा
1: पाऊ सेवन भयो शंकर कैठा
0: सिट दिखाए अचंब
1: आज वास रूप से अंभव
0: रक्षा मेरी तुम करो
1: सिख वार सिख संग्रो
0: जिते उठ पत्ता
1: सकल मलेज करो रण करता
0: तब सरनी परे
1: तिनके दुष्ट दुष्ट मरे
0: जवन पग परे तिहारे
1: तिनके तुम शंकर सब चारे
0: कल को एक बार ते आए हैं
1: ताके काल नट न है
0: शा होए ताई सब काला
1: दुष्ट रट कर तत्काला
0: दुष्ट तन जाहे न हर हो
1: ताके ताप तन कम है हर हो
0: सिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई
1: दुष्ट जात न सका न कोई
0: एक बार जन तमें

0: न पाया किने तू सुन मन मेरिया
1: माया मोहनी जिने भरम बुलाया
0: माया ता मोहनी तेने की ठकोली पाईया
1: गुरबाण किता तिसे बिटो जन मोह मीठा लाया
0: नानक मन चंचल चतुराई किने ना

संपत्ति ही श्री भगवती जी सहाये। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेंती आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ है सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदावै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देखिया निट किता तिना प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हे सीस दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देव तेग पते वृत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केश दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब।

प्रभ की जय। कृपा निदान हम हर गुण गावेंगे, हाँ तुमरी कराओ नित आसु। प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, हम अवगुण परे एक गुण नाही,

0: सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहोनी काय गया जम काल महला पहला
1: वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सेर

सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ, भिन्नी रहन जना मन चाओ, सिखी सिखिया गुर विचार, नदरी कर्म लगाए पार। कोलू चरखा चक्की चक, थाल वारोले बहुत अनंत, लाटू मधानिया नंगा।

0: सिमर प्रभु अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभु सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभु बाणी शब्द सो भाखिया गाव हो सुनो पढ़ो नित पहाई गुर पूरे तो राखिया साचा साहिब अमित वडाई भगत वशल दयाला संता की पैज रखदा आया आद बिरद प्रत पाल मेरे गुरु दा बिरद है। वो अपने प्यारियां दी हमेशा पैज सवारदा है गुरु कर दी ऐसी वडियाई है। जदों भी सिख मेरे साहबां दी पावन हजूरी अंदर पहुंचदा है जन्मां जन्मांतरां दे कीते होए कर्म जड़े ने जरूर बर जरूर कट्टी जांदे ने। ओ जड़े कर्म ने कलगीधर पातशाह जी कहिंदे भोगे बिन भागे नहीं कर्म गति बलवान। बड़ी तकड़ी गति हुंदी है कर्मां दी। जिस वेले गुरु दा सिख गुरु साहब जी दी पावन हजूरी अंदर आउंदा है उन्हां कर्मां दा बहुत जल्द नाल नबेड़ा हो जांदा है। भोगण विच तां आउंदे ने पर नबेड़ा बड़ी जल्दी हो जाता है। गुरु की कृपा गुरु चरणा की शरण में आके बख्शिश वरता ने। एक बार प्यार दा सबूत दे के आखो सतनाम श्री
1: वाहेगुरु।
0: तुसी कहो ओ किवें कलगीधर पातशाह गरीब निवाज नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह शाहे शैन शाह गुरु गोबिंद सिंह बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह तेग राफा ताह गुरु गोबिंद सिंह खालसा दे कीनो गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शैन शाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। जिन्नी मर्जी कलगीधर पातशाह जी की उस्तत करी जाइए उस्तत कदे समाप्त नहीं होया करदी। कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहब जी की पावन धरती से मैं बोल ता कह रहा है कर्म जीव दे जुड़े जाने अनजाने हुंदे ने उन्हां कर्मां दी गति बड़ी बलवान होया करदी है पर गुरु की रहमत द्वारे बहुत जल्द नाल बतीत हो जाते हैं। सतगुरु महाराज दे कोल एक बाज है तुहानू पता है आपां कहिंदे बाजां वाला सतगुरु शिकार नूं चढ़े ने एक गटार जिहड़ी है।

जप हर रंगे साध संगत विच की है नाम ते संगत विच आके नाम जप के संसार तो तर जाईदा है। गौर प्रसाद परम पद पाया सूके कासट हरिया मेरे माधो जी बोलो सत संगत मिले सो सत संगत मिले सो जेड़ा संगत विच आके मिल गया वो तर गया तर गया। गुरु रामदास महाराज जी कृपा करते ने जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे जेड़ा पिछे जीव लंघ गया वह भी त्रिग है ते जेड़ा जीव रहे ने वह भी त्रिग है ते जेड़ा संगत तो बिना अगे जीवन गए वह भी त्रिग है। जो जो एक वचन है जेड़े सारे नहीं है तुसी तो बैठे हो जो सतगुर शरण संगत नहीं त्रिग जीवे त्रिग जीवास पातशाह जी कहते उन्होंने जी नू गां नू भी त्रिग है त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। संगत विच आके एक बार प्यार विच आखो सतनाम श्री। संगत विच आके जी मेरे गुरु नाल प्रीति इयों बन जाती है जिवें पिता अर पुत्र है मां अर धी है तिवें गुरु नाल प्रीति बन जाती। जेड़े करतब नहीं होने वाले कारज वह संगत विच आके गुरु की कृपा वरतदी है। तुहानू एक मैं पौड़ी सुनावा जिथे एक बित सुनाए ने श्री मान भाई गुरदास साहब जी कहिंदे कारण कारण समर्थ है मेरा वाहिगुरु सारे करतबां दे करन वास्ते समर्थ है कोई शंका नहीं है कोई शंका नहीं है। गुरु जो चाहे सो हो सकता है करण कारण समर्थ है पर नाल कहिंदे ने साध संगत दा करे कराया। अगर जेड़ा ना भी गुरु करना चाहे तो संगत में आके संगत की अरदास की जाए तो जेड़ा नहीं होने वाला गुरु कहिंदा लो जी बेड़ा पार हो गया। करन कारण समर्थ है साध संगत दा करे करा दूजा बोल भरे भंडार दा तार है मेरे दाते दे भंडारे भरे होए ने कोई शक नहीं है भरे भंडार दा तार है। कहिंदे साध संगत दा दे दिवाया जदो संगत विच विचोला बन जावे फिर वो जेड़ा नहीं मिलना वो भी मिल जांदा जे पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया। तुसी नाल नाल पढ़ी जांदे हो मैनू पता तुसी फोन तो कढ लैंदे हो नाल दी नाल चंगी गल है किधरे कथा वाचक दी सिहारी बिहारी सज्जे खब्बे हो जाए तो उहनू पता तो लग सकदा भी इत्थों गलत मलत बोल गया। मैनू याद आया मान सिंह चौर जी का वचन वो कहिंदा मैं एक बार कथा करा तो मैं जाण के कहिंदे गुरबाणी दियां जिहड़ियां पंगतियां सी कुछ उन्हें टेप चो मैं सुनिया मैं गलत पढ़तियां किसी ने जवाब ना दिता दूजी बार फिर मैं गलत पढ़तियां किसी का जवाब ना आया जो तीजी बार गलत पढ़िया तो एक प्यारा से कह लगा ज्ञानी जी ये इदा है तो ज्ञानी जी हस के कह लगे मैं देखता सी भी कन्ना वाले बैठे के बोले ही बैठे ने। आखो सतनाम श्री ये तुहाडे फोन तो मैं ये लग जाता भी हाँ कुछ ना कुछ मिल जाना है सिहारी बिहारी सज्जे खब्बे होगी तो सारी साहब ने बोल पैना है पर ये भंडार दा तार है साध संगत दा दे दिवाया पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया जग भोग जोग ध्यान कर पूजा करे न दर्शन पाया। अगला बोल साध संगत प्यो पोत होए साध संगत प्यो पोत होए कहिंदे साध संगत विच आके प्यो ते पुत्र वाली गल बन जाती है गुरु नाल प्रीति बन जाती है। तुसी इस गल दे हामी भरोगे कोई भी बाप है पुत्र दा कदे माड़ा सोचेगा वो यही गल कहेगा मेरे पुत्र दी पोशाक सोहनी होवे मेरे पुत्र दी खुराक सोहनी होवे मेरे पुत्र दी संगत चंगी होवे जदों संगत विच आ गया नाता ये बन गया ते गुरु दी रहमत हो गई।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਖਾਏ ਪਹਿਨੇ ਪਹਿਨ ਆਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਖਾਏ ਪਹਿਨੇ ਪਹਿਨ ਆਇਆ, ਘਰ ਬਾਰੀ ਹੋਏ ਵਰਤਿਆ ਘਰ ਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਤਨਕ ਹੀ ਜਾਮਣ ਕਹਿ ਦੁਗਧ ਦੱਦ ਹੋਤ ਜੈਸੇ, ਤਨਕ ਹੀ ਕਾਂਜੀ ਪਰ ਦੁੱਧ ਫਾਟ ਜਾਤ ਹੈ, ਤਨਕ ਹੀ ਖਾਏ ਬਿਖ ਹੋਤ ਹੈ ਬਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ, ਤਨਕ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਅਮਰ ਹਵੇ ਗਾਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਗਣਕਾ ਵਿਹਾਤ ਜਿਉ, ਤਨਕ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਕਾਰ ਘਾਤ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਨਿਰਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ, ਰੰਗੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਬਿਣੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਮਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਮ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਵਲ ਦੋ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਹੀ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

आखो सतनाम श्री। जदों प्यारा सिख प्रेमी मेरे गुरु बाबा जी दे चरणा दी शरण विच आ गया तो महाराज कहिंदे इत्थे की है नाम दा जल है, आतस दुनिया खुणक नाम खुदाया, ते अंदर दी तपश जेड़ी बुझ जावेगी। चंदन चंदन सरद रुत मोल न मिटई काम, शीतल थीव नानका जपंदड़ो हर नाम। ठंड नू सर्दी दी रुत ठंडा मन्या नहीं, ठंडी नहीं है, बाहर ठंड लग जावेगी, सर्दी लगी है। चंदन दा दरख्त ठंडा है, अंदर दी ठंड थोड़ी है। चंद्रमा दिया किरणा ठंडिया ने, अंदर दी ठंड थोड़ी देनी, अंदर ते भांबड़ लगे ही होए। एसी दी हवा ठंडी है, अंदर दी तपस थोड़ी ठंडी होनी है। उन्हूं तां महाराज कहिंदे केवल गुरु दा नाम है। चंदन चंद ना सरद रुत मूल ना मिटई काम, नहीं मिटदी अग मूल ना मिटई काम, शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हर नाम। केवल गुरु दा नाम जेड़ा है वह है गुरु दे चरणा दी शरण विच, इत्थे अग बुझ जांदी है। इत्थे ते आके तत्तियां खावावां खत्म हो जांदियां ने, ताती वाओ ना लगई पार ब्रह्म शरणाई, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लहे हमारी अवर न सूजे दूजी ठहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ा लेखा छूट है, हम निर्गुण लेहो उबारी, साधु बख सिंध सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे पर्यो राख लेहो ए बारी, प्रभु की शरण सगल पै लाते, अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पाव मार, लोकन की चतुराई उपमा टेबे संतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है तार, तृष्णा अगण प्रभ आप बुझाई, नानक उदर प्रभ शरणाई। नाम करके आओ एक मिनट जपियो, सारे लायो हाजरी वांझे ना रहो, जेड़े प्रेम विच आपां जप लांगे हो सकदा मेरा रहमत गुरु कर देवे, अंदर दी शांति मिल जावे, लायो हाजरी। वाह

आप जी का पावन हर जस संगता नू सर्वन करवाया, सतगुरु जीओ रहमता करनिया, समूह सेवादारा दे सिर ते मेर भरिया हथ रख के अपने दर घर दी सेवा दे सदा योग बना लैना गरीब नवाज। ऐतवार दे दिहाड़े नू मुख रख दिया बेअंत संगता ने आप जी के पावन पवित्र दरबार दी अमृत वेले तो लै करके हुण तक हाजरियां भरिया, तिल फुल भेटावा माया रसदा आप जी के चरणा विच भेटा कीतिया। सतगुरु जी कृपा करनी दर आई समूह संगत दी हाजरी।